0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: साउथ हॉल ट्रेवल
1: 02085748410
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Oh, Julelal Kalandar, mast, mast, dam.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्सियों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहु साहब नाक रहे।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार

0: sizzling summer hits on your Leica radio.
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ATCO food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, ATCO food containers.
0: The perfect food storage solution, ATCO food containers.
2: Position your business for success with Sabici Business Center. We offer flexible warehousing and light industrial units ideal for storage, workshops and growing businesses, plus serviced offices, hot desks and meeting rooms tailored to the way you work. Enjoy flexible terms, convenient parking and half-price rent for your first month.
3: For virtual offices, business address registration and more, call 0208 799 7474. Sabici Business Center. Professional, flexible, built for business.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Chalo jaiye ek nava safar par.
9: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा ज़ांज़िबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स
10: बस पैक करो अनि रिलैक्स થઈ જાઓ
9: કેમ કે આપની સફર અમારી સફર છે વધુ માહિતી માટે
10: કોલ કરો દીપ્તિ પંડ્યાને
9: 0116266481 પર વધુ માહિતી માટે લોગ ઇન કરો sirinholidays.co.uk પર
11: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस अपील्स स्किल्ड वर्कर वीजास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 दैट्स 0208-907-2444
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
12: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
14: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
15: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
16: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
17: द ब्रेकफास्ट प्लान परफेक्टली ब्रूड बाय यू Donny Brasco ऑन Leica Radio
18: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। इट्स अंताक्षरी टाइम।

0: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
1: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
2: मैं छे ने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी।
1: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
2: बेहतर कलाकार पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
1: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
3: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
4: Want magic in every bite? Grab Hero Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hero Foods, king in quality, king in taste.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
7: अंताक्षरी कंटिन्यूज विद खुश।

0: 62481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो serenholidays.co.uk पर
1: लंडन गुड न्यूज आपका फेवरेट आईटेक अब टीआरएस कैश एंड कैरी साउथ हॉल में ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस परफेक्ट फॉर रिटेलर्स ट्रेडर्स टेकअवेज एंड केटरर्स आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे साउथ हॉल UB24AX वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड दिस इज इंडियाज लाइनअप
4: दिस ट्यून द FIH हॉकी प्रो लीग ब्रिंग्स वन ऑफ स्पोर्ट्स ग्रेटेस्ट राइवलरीज टू लंदन
5: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Center.
4: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
3: To open the scoring, he does!
5: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
6: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: London में एक महान धार्मिक अवसर Unity in Divinity presents महासोम यज्ञ 14 से 21 जून Woodlane Stanmore के Temple Grounds पर free entry सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ followed by महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं volunteer बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें venue Temple Grounds Woodlane Stanmore HA74LF for more details somyagna.com call 07932-623852.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Great deals at Himalaya Carpets. Up to 25% off on all carpets and free underlay with any fitted carpets. Room size remnants, vinyl and all floor coverings. Special offers on porcelain and laminate flooring. Visit HimalayaCarpets.com. Southall, opposite Ealing Hospital. Don't forget online too. HimalayaCarpets.com.
6: Himalayan Carpets for loyal prices. Himalayan Carpets.
7: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
8: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस अपील्स स्किल्ड वर्कर वीजास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 दैट्स 0208-907-2444
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिज है ना
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
9: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
11: 7 स्टेशंस 1 पॉडकास्ट 1 मोबाइल ऐप Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
12: A Leica Radio Classic plays now.

0: This perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
1: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
2: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: such a beautiful one, isn't it? Yara, silly, silly. Time now, though, for the feel good track of the hour. I'm going to pick up the pace slightly with this one. Yara! Are you ready for it?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आशा जी की आवाज, बिकॉज ये लड़का जब चाहिए ना तो वो आप साड़ी नहीं मंगवा रहे हो कि ऐसे कलर में चाहिए, ऐसे शेड में चाहिए, ऐसे कॉम्बिनेशन में चाहिए. इट्स अ लड़का. बट आई लव द वे शी पर्सनलाइजेस इट इन दिस सॉन्ग. तय है, थोड़ा पगला चाहिए, थोड़ा दीवाना चाहिए, तो इतना तो बनता ही है ना. Aishwarya looking absolutely beautiful in that great outfit. If you haven't seen it, go and check it out. Yeah, be thanking me later, I promise.

हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा आप और आपसे ही मैंने मोहब्बत की है, वो भी पूरी अनकंडीशनल। और कभी भी बोलने से डर नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर सच्ची मुची वाला प्यार किया हो ना, प्यार आपका सच्चा हो ना, तो डरना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, माहौल देख के बोलना भाई। Is that time of the evening? Well, we got to see what is happening around the clock, around the globe. The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s. So dedicating this beautiful track. वापस आपके लिए एक सवाल के तौर पे, आप मुझे इतना प्यार करोगे? मैं जहां बोलूंगी मेरे साथ चलोगे? हर शाम 7 से 10 के बीच।

0: माइका रेडियो।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
5: This is huge.
4: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
5: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
4: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
5: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
4: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only
6: चलो जाइए एक नवा सफर पर सिरीन
7: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
8: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
10: Eviction, tenant dispute, property ka masla. Kenton Solicitors London landlords aur tenants ke liye fast action lete hain aur residential aur commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 02089072444. That's 02089072444.
11: Leica Radio.

0: This is Leica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.

0: is Leica Radio across Greater London.
1: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: Leica Radio.
0: Time for another